0: राम राम पंडित जी।
1: को पावर्ड बाय एयर इंडिया, न्यू फील्स गुड। LIC हर पल आपके साथ।

0: Across India, families are living through the same agonizing wait. A phone that does not ring, a loved one who cannot be reached, and no answers from Nepal. Shubhashree Chakraborty, who hails from Kolkata, had travelled towards the Nepal-China border as part of a Kailash Mansarovar pilgrims group. She last spoke to her husband after completing immigration formalities.
1: मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है ना उनसे कोई फोन पे बात हो पा रहा है उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है तो कुछ नहीं हो पा रहा था हमको कोई पता भी नहीं चल रहा है
0: Samar Mondol, a resident of Shantinagar Bo Bazar in Siliguri, had left for Mount Kailash on August 16. His last conversation was on Tuesday, when he told his family he was unwell and planned to return to Kathmandu. Since then, his phone has been unreachable.
2: Kailash Yatra ke liye nikal gaye the. Uske baad to hum log contact kar rahe the. Video call bhi ho raha tha. Zyada nahi bola hai mujhe ठीक नहीं लग रहा है वॉमिटिंग हो रही है तो फिर उसने एजेंसी के लोग को बोला है हमको छोड़ दीजिए काठमांडू तक छोड़ दीजिए तब कल से कोई बातचीत नहीं हुआ हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे
0: An NRI couple from Gujarat, Vimal and Jamina Patel, remain missing after traveling to Nepal. Their last contact with the family came days ago. Since then, their phones have been switched off.
3: वो नेपाल गए हुए थे वहां से वो चाइना के लिए वो इमिग्रेशन करना पड़ता है ना तो उसके लिए वो इमिग्रेशन के लिए गए थे लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है उसका मेरा कॉन्टेक्ट तो कल सुबह से ही नहीं हुआ है कुछ भी
0: फ्रॉम सूरत थ्री कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स हैव बीन अनट्रेसेबल फॉर अराउंड 24 आवर्स
4: पिछले 24 आवर्स से मिसिंग है उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है हमने भी यहाँ से उनका संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका संपर्क नहीं वो फोन रिसीव नहीं कर रहे जो टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी है उसका फोन नहीं लग रहा तो इसके रिगार्डिंग हमने नेपाल के कंट्रोल रूम में ये सूचना भेजी हुई है कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त मिलती है और किसी को कोई प्रकार की सहायता की जरूरत है तो हम उनको सहायता पूरी करेंगे
0: In Trishuli, Usha Chaurasia and her son Rahul, originally from Balia, have been missing since the disaster.
5: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है कुछ भी हो सकता है इतना बोलने के बाद फोन कट गया फिर फोन लग नहीं रहा है बड़ी मम्मी और राहुल जो कि मिल नहीं रहे हैं
0: The flood waters may be receding, but for these families, the nightmare is far from over. As rescue teams continue the search in Nepal, Every passing hour deepens the anxiety, and every survivor found brings a flicker of hope for those still waiting back home. Bureau Report, India Today.

0: से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का
3: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
0: अब मैं क्या ही बोलूं?
4: परिवार अटूट भरोसा।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
1: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
3: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
4: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
1: अब मैं क्या ही बोलूं?
5: परिवार अटूट भरोसा।

0: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मीटर का पानी जमा हो चुका है और यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं और ये तमाम लोगों को अब यहाँ से आगे, ये नुआकोटी का वो धुंडे इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही की हमें मंजर देखने को मिला था, आखिरी वो शहर जो बर्बाद हुआ और उसके बाद अब लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाए। ये पुलिस है और लगातार लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ से निकलिए, आगे की ओर जाइए। अब तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है कि खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है, ऊपर से पानी आने की गुंजाइश फिर से है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ अभी यहाँ पे?
1: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
0: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
2: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
0: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
2: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
0: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
2: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
0: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई और देखिए आप पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो है वो लोग वहाँ से चले जाएं और इनको खाली कराया जा रहा है, जितने भी लोग हैं। और ये कहा गया कि यहाँ से निकल जाएं क्योंकि नेपाल की ओर से फिर एक बार बाढ़ का खतरा है, संभवतः वहाँ से वाटर डिस्चार्ज हुआ है, तो लोगों को कहा गया है कि वो यहाँ से निकल जाएं। अभी एक त्रासदी से नेपाल उभरा नहीं था कि अब एक बार दूसरे बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है नेपाल में। मैं आशुतोष मिश्रा।
3: This is very important what Ashutosh has sent us as a ground report. This is to help you understand that now evacuations are being done because there were some Nepalese journalists who had mentioned about no warning earlier. And if China had possibly given that warning earlier, they could have done evacuations on this side of the border. But this time, because there are some alerts that have come in, they're already looking at evacuations to save as many lives as possible. So here's what we are going to do, viewer. Ashutosh continues to be live with us from Ground Zero, but he's also constantly send us ground report from different areas. So what I'm going to do is, I'm going to constantly play that. He's in Nuwakot right now in Nepal, but he's sending us ground reports from Trishuli, from Rasuwa, other areas as well. So Ashutosh, I'll keep playing that for you, but you stay safe, okay? And ensure that we are looking forward to your reports, but you take care of yourself. Over to you, Ashutosh, for what's next.
0: The devastation in Nepal has left hundreds of the families in India desperate for answer, for response. Many had gone for pilgrimage, many were working on the hydro project site, many went as a tourist, and now the phones are not ringing anymore. There is no communication, there is no text message, and all the families are concerned, waiting for their loved ones. When will they come back?

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: first up, we cut across to breaking news coming in. Another flood that is approaching Nepal in all likelihood is what we are picking up. Nepal flood, where Nepal has gotten a notice saying that the lake has broken its banks. This is the notice from the district official. And the latest coming in of how the district official has said that we can see the level of river water rising. Also saying that rescue operations have been stopped for the next 1.5 hours for this very reason. This has come from the Nepal Army official. My colleague Shweta on the ground getting us the very latest on this.
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है। लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही चेतावनी दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि बाढ़ आ सकती है, ये देखिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये तमाम सारे लोग अब यहाँ से नीचे के इलाकों से आगे की ओर जाना शुरू कर चुके हैं और चीन की ओर से भी चेतावनी दी गई थी कि जो लगभग अब तक 20 लाख क्यूबिक मीटर का पानी जमा हो चुका है और यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं और ये तमाम लोगों को अब यहाँ से आगे, ये नुआकोटी का वो धुंडे इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही की हमें मंजर देखने को मिला था, आखिरी वो शहर जो बर्बाद हुआ और उसके बाद अब लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाए। ये पुलिस है और लगातार लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ से निकलिए, आगे की ओर जाइए। अब तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है कि खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है, ऊपर से पानी आने की गुंजाइश फिर से है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ है अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था प्राकृतिक बांध वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई और देखिए आप पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो है वो लोग वहाँ से चले जाएं और इनको खाली कराया जा रहा है, जितने भी लोग हैं, और ये कहा गया कि यहाँ से निकल जाएं क्योंकि नेपाल की ओर से फिर एक बार बाढ़ का खतरा है, संभवतः वहाँ से वाटर डिस्चार्ज हुआ है, तो लोगों को कहा गया है कि वो यहाँ से निकल जाएं। अभी एक त्रासदी से नेपाल उभरा नहीं था कि अब एक बार दूसरी बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है नेपाल में। मैं आशुतोष मिश्रा।
0: And while the rescue operation continues, many await the news about their loved ones.
4: Hello and welcome on this special broadcast on India Today. I'm Shweta Singh and I'm reporting live from Nepal, where the threat has still not subsided. Nepal has seen one of its worst flood tragedies and the devastating floods, not just their memory, but of another impending threat are still there, looming large across the hills of Nepal. I'm right now near Nuwakot, which is the worst affected district. There are still pockets where people are living, but they are living in fear because China has warned of another potential threat. Actually, there's a 2 million cubic lake that has built at the mouth of the Bhotekoshi River. And if the water level there increases, it will be very difficult to manage. Right now, the Nepalese government is trying hard to locate all those missing, to provide relief to the survivors. Balin Shah has categorically told all the forces to put in all efforts for the rescue and relief. He said that priority is to locate the survivors and bring them out. 13,000 personnel, 13,000 security forces from the Nepal army to the paramilitary forces to the police are right now currently involved in these rescue and relief operations. But as we speak, there are people who are missing in various areas, but there was some relief because the laborers who were involved in the Trishuli hydropower project have been rescued. There were a number of Indians in that as well. So the rescue and relief operations are ongoing. 13,000 security personnel, as we told you, are on the ground. Critical infrastructure, telecommunication, to restore all that is the priority of the administration here. And almost 290 Indians are still missing in Nepal.
1: The biggest concern for Nepal was that how early warning system that was supposed to be used by China wasn't used and Nepal was not informed. How the glacial lake, these GLF were literally found. So I see right behind me, just behind those thick layer of cloud, those are the peaks, those are the glaciers. And that's exactly what the China-Nepal border is. That's the Ruswa district. And exactly on the plateau between those glacial points, peak of those snow peak mountains, that's where the lake formations are. So many of these peak points between China-Nepal, there is a glacier formation, there's a lake formation. And early warning system is often used by, including by the Chinese satellites, who often keep a tab since it's a very sensitive area, ecologically very fragile. And despite of having, you know, high potential satellites, the China could not see what is unfolding in that. And because of it is Chinese approach that they did not see what is unfolding, they did not even inform Nepal. So the glacial outburst took place, or even it was a rock avalanche. It eventually started bringing the huge amount of debris and water downstream, and that triggered massive scale of devastation for Nepal. Often they, you know, the expert, the climate activists have been alarming about need of, you know, the early warning system, and perhaps why the China ignored. There's a treaty between Nepal and China to inform Nepal about any possible such calamity. Now there is an early warning mechanism that since there is a lake formation continues, and as and when it breaches, there will be another round of flooding downstream towards Nepal onwards further. However, this is how exactly looks, where from the peak of these mountains, where the lake formations are, that could be a potential high-risk disaster situation even in the future. Somewhere between Nuwakot, this is Ashutosh Mishra at Ground Zero for India Today. Nepal is now on a risk of another severe calamity after China alerts Nepal for another glacier lake formation in the confluence. Major two rivers where till 27th of morning, nearly 2 million cubic water has been collected. And another 3 days, it is likely to reach up to 5 million cubic. And in that case, even these lakes would breach the barrier. And in that case, you will see all these river terrain of Nepal would be flooding with the severe debris. And again, potentially harm and decimate all the residential area. That's a massive risk that has been alerted by China to the Nepalese authority. Nepal has warned the people living near the embankment sites. People have been evacuated, already safety measures in place, and warning has been issued. So this makes another, remember, China was failed to inform Nepal about glacier formation, and potentially water could breach and lead to this kind of disaster, devastation. This time it has alerted that in the confluence of these two rivers, clearly it is now on a potential risk of another severe flood, which could be bring another scale of disaster and devastation. At Ground Zero, this is Ashutosh Mishra for India Today.
5: इस त्रासदी में इस बेटी को उम्मीद थी कि जिन लोगों का नाम पर्चे पर है उनमें एक नाम इसके पापा का भी होगा जो तैमूरे के पास खो गए थे लेकिन अब तक घर नहीं लौटे. राहत बचाव कार्य चल रहा है, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है. सब बहुत लोग लौटे हैं लेकिन इस बच्ची के पापा नहीं लौटे हैं और अभी तक पापा के इंतजार में ये बेटी. आंखों के आंसू यहाँ पर सामान्य है. ये पीड़ा जो है बहुत सारे लोगों के अंदर है जो अपनों को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी बचा लिया जाएगा. लेकिन ये राहत बचाव कार्य जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां, और इसीलिए जब ये नाम निकल करके इन जगहों पर आते हैं कि इन लोगों को बचा लिया गया है तो बहुत सारे लोग उम्मीद में आते हैं कि शायद उनके अपने भी लौटेंगे. ऐसे बहुत सारे किस्से इस त्रासदी ग्रस्त नेपाल में दिखाई दे रहे हैं. सुनाई दे।
6: ये कौन है, आप किसको खोज रहे हैं, ये कौन है?
7: ये हमारा छोटा चाचा जो मिसिंग फ्रॉम गटेकुल्लो रसुआ। हम 3 दिन से इधर आकर ढूंढ रहा हूँ अभी तक, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं।
5: इसको खोज रहे हैं यहाँ पर लास्ट में?
8: मेरा भाई का नाम खोज रहा है लेकिन इधर नहीं है।
5: कहाँ पर काम करता
8: है? बेतरावती में काम करता है, जब उधर करता है मेरा भाई।
5: कितने लोगों को देख करके लगा कि वापस उम्मीद बनी कि भाई भी आ जाएगा?
8: आ जाएगा आज लग रहा है, लेकिन संपर्क भी नहीं है ना। इधर है कैसे, है कैसे हालत में है, क्या क्या कर रहा है मालूम नहीं। फोन में हुई घटना होने के 2 दिन बाद अगला दिन बात हुआ था, लेकिन उसके दिन बात ही नहीं हुआ अभी तक।
5: आप किसको खोज रहे हैं?
9: मैं अपना सालों को खोज रहा हूँ।
5: पता चला उनके बारे में?
9: कुछ भी पता नहीं चल रहा है अभी तक।
5: वो कहाँ पर थे?
9: वो कहाँ पर थे? वो टिमोरे में थे। टिमोरे रसागढ़ी, वो नाका में थे। ड्राइवर था, एक सीनू कंपनी का गाड़ी चलाता था। वो अभी 3 दिन से लापता है।
5: नाम, इसमें नाम है उनका?
9: नाम देख रहा हूँ, एक ही नहीं, कल सुबह मैंने उसका नाम लिस्ट टिपाया था। अभी रेस्क्यू टीम में एक ही नहीं,
5: वो लोग हैं जिनको बचाया गया।
9: हाँ, ये बचाया गया है, उसका मैं नाम देख रहा हूँ।
5: आप सोचिए कि जो लोग उम्मीद से आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यहाँ वो नाम है मेरे पीछे जिन्हें बचा लिया गया है, और अगर इनमें वो अपनों को पाते हैं तो खुशी होगी, आंखों में फिर खुशी के आंसू होंगे। लेकिन जो अपनों को नहीं खोज पाएंगे, सोचिए उनके दिल पर क्या।
4: 469 people have lost their lives so far in the Nepal tragedy, and thousands are still missing. In these thousands are a number of foreign citizens. India has offered help through NDRF to help in rescue and relief missions, but the Nepal government has so far refused any sort of financial assistance, assistance for rescue and relief efforts. In fact, the Balinshah government has said that any assistance should be rooted in the form of financial assistance through the Prime Minister's fund. Now, there are many countries who have offered help. The countries among these are the US, the UK, Japan, China, India, of course, South Korea, Sri Lanka, Bangladesh have also offered help. And don't forget that most of these countries are those whose citizens are still missing in the Nepal tragedy. Whenever a tragedy of this magnitude strikes, time is at a premium. You need to rescue the survivors as soon as possible. And that is why the Nepal government is being begged to find a route where help through these countries could come and help in locating the survivors. But probably it is the rescue efforts, the international agencies which landed here after the Nepal earthquake, that has left a bitter taste and a bad memory in the minds of the present government. But the problem at that time was more of coordination, and this time the government does not want to repeat the same mistake, and that is why the Nepal government has instead asked for financial assistance rather than people on the ground helping out in these relief missions.
10: 2 aircraft with humanitarian assistance have been sent to Kathmandu. A C-130J aircraft took off yesterday at around 8:30 p.m. carrying 10 tons of relief material, including temporary shelters, blankets, hygiene kits, solar lamps, medicines, etc. And then this morning, a C-17 aircraft departed with 37.5 tons of supplies, comprising 28.5 tons of relief items such as tents, blankets, hygiene kits, solar lamps, dewatering pumps, kitchen sets, gen sets, etc. 8 tons of medicine and 1 ton of food items. In total, across the 2 departures by air, India has sent 47.5 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations.
4: The Nepal floods have triggered a massive humanitarian crisis, especially for those missing and for the families of those missing who are desperately, anxiously waiting to get some news. Among them are a large number of Indians, and we'll run you through the data that we have. 63 Indian nationals, though, have been rescued from the Trishuli 1 power project site in Nepal. Among them, a lot of other Nepali nationals were also there, but 63 Indian nationals have been rescued. 290 Indians still remain untraceable. 84 have so far been traced. Missing and stranded, we'll take you through the data from across different states. 86 from Tamil Nadu and Puducherry are still missing. 32 from West Bengal, 7 from Andhra Pradesh. Meanwhile, 53 people from Keralam are also stranded in Nepal in this deluge. 114 tourists from Maharashtra are stranded, 13 plus from Karnataka. 41 from Andhra Pradesh are also stranded. The center has stepped up efforts. There is rescue material, the relief material that has been sent to Nepal. Around more than 47 ton of relief material has been sent here. But the MEA has set up a 24/7 control room in Delhi, and India has sent, apart from the relief material, two aircraft carrying essential supplies are here. A C-17 aircraft has been deployed as part of India's relief measures. But families back home are anxiously waiting for any news about their loved ones, those that are missing in the Nepal floods. Rajdeep Sardesai spoke to some of the families.
11: I want to focus on that human angle. Joining me now, Lohit Kumar is brother of Suhasini Reddy, missing in Nepal. Shudipto, husband of Shubhashri Chakraborty, also missing. And Dhaval Rawal, Bhavin Rawal's brother, who's missing. First of all, before anything else, I hope that you will get good news sooner rather than later.

0: से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का
3: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
0: अब मैं क्या ही बोलूं?
4: परिवार, अटूट भरोसा।

0: And well, popular Haryanvi singer and YouTuber Ankit Balyan was shot dead by four assailants. This happened outside a gym in Uttar Pradesh's Shamli. The attackers fired around 12 rounds at the singer, who suffered multiple bullet injuries, including a gunshot wound to his head. He died in the attack before the shooters fled the spot. The motive behind the murder is yet to be established as the investigation is ongoing. CCTV footage from the incident that has surfaced showing four suspected attackers arriving on two motorcycles outside the gym. The attackers followed Ankit as he had left the gym and was going towards his car. The assailants opened fire at Ankit and fired multiple shots at that. Ankit Balyan sustained multiple bullet injuries, including one to the head. He died on the spot. People present on the spot ran for safety while the shooters fled the crime scene. A manhunt for the shooters had been launched and multiple teams have been formed to arrest the accused. Police are probing all possible angles, including an old rivalry and a possible connection with the upcoming panchayat elections. Let's take a look at that sequence of events and how the murder was carried out.
1: जांच में यह जानकारी मिली है कि चार शूटर्स थे जो दो मोटरसाइकिलों से घटना करने के बाद फरार हो गए. घटनास्थल पर लगभग 18 कारतूस के खोखे मिले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है. इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर भोलू शाहपुरिया द्वारा ली गई है, जो अपने आप को गोगी गैंग का मेंबर बताता है. ये गोगी और टिल्लू ताजपुरिया ये आउटर दिल्ली और हरियाणा रोहतक आदि क्षेत्र के में प्रभाव रखने वाले अपराधी थे.
2: जो हमारे लड़के के साथ हुआ, हमें वहीं पर वो लड़का लेटा हुआ चढ़ा, वे जो गोली मार गए, लड़के का गोली लगी, उसके बाद सीधा पोस्टमार्टम के लिए ले गए उसे. घर पे किसी के पास फोन नहीं, किसी को पता करा हो कि आपके लड़के का ही हो गया, क्या हुआ, सीधा पोस्टमार्टम पर. हम रात भी पुलिस को यही कहते रहे, हमें वे लड़के चाहिए, पुलिस वाले हैं या बदमाश हैं, हमें क्या पता, उनका प्राइवेट कपड़ों में थे वे.
0: एंड देयर यू हियर फ्रॉम द किन ऑफ द डिसीज्ड. मीनवाइल दैट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट शोड यू हाउ द मर्डर वाज कैरिड आउट, टेक अ लुक एट इट वेरी क्लोजली.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: And we begin with the breaking big news of the day. Nepal is bracing for fresh floods. A lake formed by debris from a glacier collapse has begun to overflow, forcing rescue operations to be halted. A Nepal police official has said the water level is expected to rise and people have been asked to move to higher ground. The administration and government are on higher alert. Meanwhile, the death toll continues to rise. Nepalese authorities have said 475 people have lost their lives so far in the tragedy, while a hunt is on to rescue more than 900 people who remain missing. Satellite images capture a stark before and after picture of the affected areas, revealing how the topography was transformed within minutes. As surging waters from the mountains gushed downhill with immense force, they widened the river's course, visible in the distinctive brown line, while sweeping away entire settlements that stood there before.
1: नेपाल में आपदा का क्या दूसरा चरण आने वाला, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि एक बार फिर तिब्बत के इलाके में जिस तरह से जो जलाशय बन रहा था उसका बांध टूटा है, उसके बाद भटकोशी नदी का स्तर बढ़ने लगा है। सरकार और प्रशासन ने लोगों को नदियों के किनारे से दूर जाने को कहा है। अब नुआकोट में इसी के साथ असर ये हुआ है कि ये त्रिशूली नदी है और ये ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे पहाड़ों की ओर से तो आगे जो रुसवा और आगे फिर तिब्बत का इलाका शुरू होता है, तो ऐसा हो कि भटकोशी के साथ पानी अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी पानी का स्तर बढ़ सकता है। और ऐसे में चेतावनी ये दी गई है कि लोग इन किनारों से हट जाएं। और इसलिए नुआकोटी के आसे जो ढेंग इलाका है, देखिए पूरा सब कुछ खाली करा लिया गया है। यहाँ जो स्काउट के लोग हैं, प्रशासन पुलिस के लोग हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाएं, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और इसलिए ऊपर के जो गांव हैं, ये जो इलाके हैं, इनको भी खाली कराया गया है। साथ ही पीछे जहां पर राहत बचाव कर, दरअसल ये जो गांव है इसके आगे सड़क पूरी तरह कट चुकी है। यहां पर जो है सड़क का रिस्टोरेशन का काम चल रहा था, लोगों को मलबे में खोजा भी जा रहा था, लेकिन अब वो सारा ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। हेली ऑपरेशन उन इलाकों में बंद कर दिया है जहां पर सेना को या एपीएफ को या फिर रेस्क्यू फोर्सेस को उतारना पड़ रहा है क्योंकि अब पानी का स्तर, और इसी के साथ ये वो नदी है त्रिशूली नदी जिसे आप देख रहे हैं, यहां पर भी इसका स्तर पानी का बढ़ सकता है। और अगर ऐसी स्थिति हुई तो चेतावनी ये भी दी गई है कि कहीं ये पिछले यानी वेव टू जो है वो वेव वन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तीव्रता ला सकता हो। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर तबाही बढ़ सकती है, लेकिन समय रहते प्रशासन ने लोगों को सचेत किया, अलर्ट किया और उन्हें यहां से जाने को कहा।
0: And my colleague Ashutosh Mishra has been reporting from the Nuwakot district of Nepal, where rescue operations are in full swing. Take a look at Ashutosh's report.
2: Nepal is now on a risk of another severe calamity after China alerts Nepal for another glacier lake formation in the confluence. Major two rivers where till 27th of morning, nearly 2 million cubic water has been collected, and another 3 days it is likely to reach up to 5 million cubic, and in that case even these lakes would breach the barrier, and in that case you will see all these river terrain of Nepal would be flooding with the severe debris and again potentially harm and decimate all the residential area. That's a massive risk that has been alerted by China to the Nepalese authority. Nepal has warned the people living near the embankment sites. People have been evacuated, already safety measures in place and warning has been issued. So this makes another, remember China which failed to inform Nepal about glacier formation and potentially water could breach and lead to this kind of disaster, devastation. This time it has alerted that in the confluence of these two rivers, clearly it is now on a potential risk of another severe flood which could bring another scale of disaster and devastation. At Ground Zero, this is Ashutosh Mishra for India Today.
3: Warning to हमको वो रस्वा करी सिंह रस्वा जिले से मिली है, उधर का वो ग्लेशियर लेक टूट गया है बोल रहे हैं और लोग।
1: किन किन इलाकों को आपने खाली किया है?
3: हमने त्रिशूली बाजार है, ढूंगे बाजार हमने खाली कर लिया है, वो आदमी हम उधर जाने के लिए रोक रहे हैं।
1: वाटर लेवल बढ़ा है या बढ़ रहा है धीरे?
3: वाटर लेवल बढ़ रहा है,
0: And while the rescue operation continues, many await the news about their loved ones.
4: इस त्रासदी में इस बेटी को उम्मीद थी कि जिन लोगों का नाम पर्चे पर है उनमें एक नाम इसके पापा का भी होगा जो तैमूरे के पास खो गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। राहत बचाव कार्य चल रहा है, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, सब बहुत लोग लौटे हैं लेकिन इस बच्ची के पापा नहीं लौटे हैं और अभी तक पापा के इंतजार में ये बेटी। आंखों के आंसू यहाँ पर सामान्य हैं, ये पीड़ा जो है बहुत सारे लोगों के अंदर है जो अपनों को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी बचा लिया जाएगा। लेकिन ये राहत बचाव कार्य जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां, और इसीलिए जब ये नाम निकल करके इन जगहों पर आते हैं कि इन लोगों को बचा लिया गया है तो बहुत सारे लोग उम्मीद में आते हैं कि शायद उनके अपने भी लौटेंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से इस त्रासदीग्रस्त नेपाल में दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं।
5: ये कौन है, आप किसको खोज रहे हैं, ये कौन है?
6: ये हमारा छोटा चाचा जो मिसिंग फ्रॉम गटेकुल्लो रसुआ। हम तीन दिन से इधर आकर ढूंढ रहा हूँ अभी तक, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं।
4: आप किसको खोज रहे हैं?
7: मैं अपना सालों को खोज रहा हूँ।
4: पता चला उनके बारे में?
7: कुछ भी पता नहीं चल रहा है अभी तक।
4: वो कहाँ पर थे? वो कहाँ पर थे?
7: वो टिमोरे में थे। टिमोरे रसागढ़ी, वो नाका में थे। ड्राइवर था, एक सीनू कंपनी का गाड़ी चलाता था। वो अभी तीन दिन से लापता है।
4: नाम, इसमें नाम है उनका?
7: नाम देख रहा हूँ, एक ही नहीं, कल सुबह मैंने उसका नाम टिपाया था। अभी रेस्क्यू टीम में वो एक ही नहीं,
4: वो लोग है जिनको बचाया गया।
7: हाँ, ये बचाया गया है, उसका मैं नाम देख रहा हूँ।
4: आप सोचिए कि जो लोग उम्मीद से आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि यहाँ वो नाम है मेरे पीछे जिन्हें बचा लिया गया है, और अगर इनमें वो अपनों को पाते हैं तो खुशी होगी, आंखों में फिर खुशी के आंसू होंगे। लेकिन जो अपनों को नहीं खोज पाएंगे, सोचिए उनके दिल पर क्या।
0: India Today interacted with Nepal MP Sushil Kharge over the current situation. Let's listen in to what he had to say.
8: Mr. Khitka, having known about this geographical region, when yes. we hear of Hatkoshi River, there's a water level rising. Another, there's a looks like a lake burst,
9: yes.
8: so outflow. So how do you see this terrain, if you can just explain to us?
9: So this Raswa region, Raswa Nuwakot, this region basically, this if you this, so if you go another 100 kilometers or plus, we will reach Tibet or like China. So this region is always a fragile region. So this is a Himalayan region, and there is a lot of tectonic activities going on underneath. And if you just look at the higher terrain also, they are not like rock solid. They are very fragile. So this kind of, in this kind of like fragile terrain, we should be more prepared.
8: How do you see the situation, and how do you see the efforts of the rescue and search operation? Do you think that can be enhanced further?
9: Yeah, of course, there is always room for improvement. But like looking at the ongoing efforts, rescue operations going on in the ground, I am very satisfied, very happy. The local support, you can see all these young people, they all are volunteers. You can see the state, like a police force, you can the military people, paramilitary force, they all are here. And the local people, they all are supporting. And we now, you can see, we have another member of parliament also. Mm. She's also joining with me. No, rescue operations, we can definitely improve. We can definitely enhance. But I'm more than happy. But you can see, like, those tragic scenes were very devastating. But now, looks like things have become normalized.
0: And India Today's Shweta Singh is also on the ground in Nepal and brings us this report.
10: 35 motorable bridges, 45 suspension bridges and 40 kilometers stretch of road that was completely devastated and destroyed by this deluge. Behind me, you can see one such bridge which has been completely destroyed by this. There are trees, there are parts of the trees that have fallen onto it. There is entire debris that is covering this bridge. While one part of it you can see in good condition, which is being used for normal traffic, the other side of the bridge you can see completely destroyed. And just think about it, the pressure of the water and the debris, the pressure of this deluge was such that it has washed away a concrete bridge. What about normal humans, mortals that walk this path? With camera person Sayed Mohsen, this is Shweta Singh in Nepal for India Today.
0: The Nepal floods have triggered a massive humanitarian crisis with hundreds dead and several Indians still untraceable. As rescue operations intensify, families across India are desperately waiting for news of their loved ones. 63 Indian nationals have been rescued from the Trishuli One Power Project site in Nepal in the wake of the devastating flash floods in the neighboring country. As per the latest update, 290 Indians remain untraceable, while 84 have been traced. The missing and stranded include 86 persons from Tamil Nadu and Puducherry, 32 from West Bengal and 7 from Andhra Pradesh. Meanwhile, 53 people from Kerala are stranded, 114 tourists from Maharashtra are stranded, while 13 plus from Karnataka and 41 from Andhra Pradesh are also stranded. The centre has stepped up efforts to trace and rescue those caught in the Nepal floods. The MEA has set up a 24/7 control room in Delhi, while India has sent 45 tons of relief material, including two aircraft carrying essential supplies. A C-17 aircraft has also been deployed as part of India's relief and rescue efforts. Families back home are anxiously waiting for news of their loved ones. Rajdeep Sardesai spoke to the families of Indians still missing in Nepal. Take a look.
11: We have been able to rescue 21 Indian nationals. These 21 group of 21 people are from Tamil Nadu, and we are making available their names on our X handle so you can get the details. Our embassy, our ambassador has spoken to people in the group and have assured all possible help. They are coming to Kathmandu, hopefully, and then arrangements will be made for their travel back home as soon as possible.

0: Kolkata had travelled towards the Nepal-China border as part of a Kailash Mansarovar pilgrims group. She last spoke to her husband after completing immigration formalities.
1: मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है ना उनसे कोई फोन पे बात हो पा रहा है उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है तो कुछ नहीं हो पा रहा था हमको कोई पता भी नहीं चल रहा है
0: Samar Mondol, a resident of Shantinagar Bow Bazar in Siliguri, had left for Mount Kailash on August 16. His last conversation was on Tuesday, when he told his family he was unwell and planned to return to Kathmandu. Since then, his phone has been unreachable.
2: Kailash Yatra ke liye nikal gaye the. Uske baad to hum log contact कर रहे थे वीडियो कॉल भी हो रहा था ज्यादा नहीं बोला है मुझे ठीक नहीं लग रहा है वॉमिटिंग हो रही है तो फिर उसने एजेंसी के लोग को बोला है हमको छोड़ दीजिए काठमांडू तक छोड़ दीजिए तो कल से कोई बातचीत नहीं हुआ हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे
0: An NRI couple from Gujarat Vimal and Jamina Patel remain missing after traveling to Nepal their last contact with the family came days ago Since then, their phones have been switched off.
3: वो नेपाल गए हुए थे वहां से वो चाइना के लिए वो इमिग्रेशन करना पड़ता है ना तो उसके लिए वो इमिग्रेशन के लिए गए थे लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है उसका मेरा कॉन्टेक्ट तो कल सुबह से ही नहीं हुआ है कुछ भी
0: From Surat, three Kailash Mansarovar pilgrims have been untraceable for around 24 hours.
4: पिछले 24 आवर्स से मिसिंग है उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है हमने भी यहाँ से उनका संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका संपर्क नहीं वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं जो टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी है उसका फोन नहीं लग रहा तो इसके रिगार्डिंग हमने नेपाल के कंट्रोल रूम में ये सूचना भेजी हुई है कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त मिलती है और किसी को कोई प्रकार की सहायता की जरूरत है तो हम उनको सहायता पूरी करेंगे
0: In Trishuli, Usha Chaurasia and her son Rahul, originally from Balia, have been missing since the disaster.
5: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है कुछ भी हो सकता है इतना बोलने के बाद फोन कट गया फिर फोन लग नहीं रहा था बड़ी मम्मी और राहुल जो कि मिल नहीं रहे हैं
0: The flood waters may be receding, but for these families, the nightmare is far from over. As rescue teams continue the search in Nepal, every passing hour deepens the anxiety and every survivor found brings a flicker of hope for those still waiting back home. Bureau Report, India Today.
6: Our prayers and best wishes go out to those who are waiting for rescue and those who are yet to be traced. We will be keeping a very close eye on all the developments from Nepal and we will be bringing you all the inputs from the ground. But it's time now for me to take a very short break. More news and updates continue on the other side. Keep watching India Today.

0: Bollywood has always wrapped Rocky stories in layers of emotion, nostalgia, and desi flair.
1: Pino! तूने मंदिर से मेरे भक्तों की चप्पल चुराई है. तू पापी है. मैं नहीं छोडूंगी तुझे. पकड़ पकड़ के सजा दूंगी.
2: कहाँ गई?
3: क्या हुआ बेटा?
4: क्या हुआ?
2: कहाँ गई?
3: क्या हुआ पिनो?
4: क्या हुआ? अरे कोई सपना देखा होगा. पानी पिला के सुला देना उसको.
3: कुछ नहीं.
0: Let's take a trip down memory lane and revisit some iconic Bollywood films that beautifully showcase the spirit of Raksha Bandhan.

0: चल हाथ ला।
1: मैं नहीं बंधवाता राखी वाखी।
0: चुप।
1: क्या जीजी, ये क्या बात हुई? आप लोगों को आज ही वापस जाना है क्या?
0: हंसते खेलते ये दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला।
2: Directed and co-written by Vasan Bala, Jigra is a visually intense action thriller starring Alia Bhatt as Satya and Vedang Raina as Ankur. The movie defines the sibling bond by loss and loyalty. Where Satya becomes the fearless protector, driven by trauma and love to challenge moral boundaries.
3: देखो, देखो मुझे। मेरी राखी पहनता है ना तू? तू मेरे प्रोटेक्शन में है।
2: Then Ankur is framed for a crime and imprisoned abroad. The film is visually intense and occasionally stirring. Their bond anchors the narrative and jailbreak chaos.
4: Yeah.
5: Smetani saab ke office mein aag lag gayi hai.
4: What? Aag?
2: Yet, while the emotional core is compelling with flashbacks, shared memories or tender moments that could have deepened their connection throughout the film.
6: बताओ अपनी बहन को।
7: मॉम प्लीज, मैंने कहा ना एक बार मुझे नूरी से बात कर लेने दीजिए।
6: मॉम,
2: दे मे बी हाई फ्लाइंग एलीट सिब्लिंग्स,
6: कबीर और नूरी
2: क्रूजिंग द मेडिटेरेनियन, बट कबीर एंड आयशा आर द पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिब्लिंग गोल्स।
6: हम क्या कर रहे हैं कबीर? हैव यू लॉस्ट योर माइंड?
8: लॉस्ट योर माइंड?
6: बोलो बोलो ना। मेरे घर में तो मुझे कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं है, तो तुम ही कुछ बोलो।
2: Priyanka played the stylish and accomplished businesswoman Aisha Mehra, whereas Ranveer played Kabir, who aspires to fly instead of running his father's business. They bicker, tease and support each other through rocky marriages and broken dreams. Their quiet camaraderie, especially during emotional breakdowns, proves that even amidst champagne parties and billion-dollar business deals, bhai behan ka pyar stays real.
9: जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा
6: इनकी शादी।
2: दिस फिल्म वेयर्स द ओकेशन इन इट्स टाइटल एंड हार्ट। अक्षय कुमार प्लेज अ लविंग ब्रदर वर्किंग टायरलेसली टू मैरी ऑफ हिज फोर सिस्टर्स।
10: आपको गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा।
11: 25 रुपए के गोलगप्पे के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे दे तुझे।
12: कितने सालों से इंतजार कर रही है तू इस आदमी का? कभी अपनी बहनों की शादी करेगा, कब तेरे से शादी?
2: ऑल वाइल बैटलिंग इमोशनल, सोशल एंड फाइनेंशियल प्रेशर।
13: 20 लाख एक लड़की की शादी के लिए बहुत ज्यादा। चार महीने डिस्काउंट तो बनता है।
14: जो वैरायटी लेके आए हो ना, कमीशन डबल बनता है।
13: कौन सा बैंक लूट
2: के लाऊंगा? इट्स अ टियर जर्कर फिल्ड विद मिडिल क्लास रियलिज्म, हेवी ऑन सेंटीमेंट एंड अ पावरफुल मैसेज अबाउट डाउट। Directed by Anand L. Rai, the film also stars Bhumi Pednekar in a lead role.
15: मेरी लुगे?
12: 8 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। रिटायर होने से पहले मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। 6 महीने तेरे पास, वरना कोई बढ़िया सा रिश्ता देख के ना इसको निपटा दूंगा। फिर याद करते रहना अपने बचपन का प्यार। अब नहीं रुकूंगा मैं, और दहेज देने के पैसे हैं मेरे पास।

0: The story of the film revolves around a joint family and its values and togetherness, who grow apart after a misunderstanding.
1: ये मुमकिन नहीं है प्रेम।
2: क्यों नहीं विवेक? बेटे हम तुम्हें और साधना को साथ लेकर लौटेंगे। आदर्श बाबू, रामकिशन जी के परिवार के साथ खुशियों के इतने पल बिताए हैं, अब ये दुख के बादल घेरने नहीं देंगे। और फिर आज का दिन कितनी खुशी का दिन है, हैं? यहाँ आकर मौसी से पता चला कि हमारी साधना बेटी खुशखबरी सुनाने वाली है, तो बेटी ये खुशी बांटनी ही है, एक बार प्रेम के साथ चले चलो। आदर्श बाबू, विवेक से आप कहिए।
0: The timeless classic featured Salman Khan, Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Karishma Kapoor, Monish Behel, Tabu, Neelam, among others in pivotal roles.
2: बस मन नहीं है।
3: अंकल, एक भी नहीं।
2: अच्छा ठीक है, आधा खा लेते हैं।

0: The Priyadarshan directorial follows young Ali and his sister Zahra, who share a single pair of sneakers after Zahra's are lost. Their father, struggling with poverty and low-paying odd jobs, can't afford new shoes. And thus, the siblings scheme around their school schedule to share the shoes.
1: I was not scared of my son, but my father doesn't have money. How can we buy new shoes on the first day? I thought this will come to your back.
0: Amid financial struggles, Ali enters a foot race, hoping to win new shoes for Zahra. A beautiful, simple, and emotionally rich story which leaves you quite and profoundly moved.
2: Kaise mila?
1: Mata miss ne diya tha.
2: सच्ची मुच्ची मेरे लिए?
1: हाँ।
2: तुझे पता है मैं माँ को कुछ नहीं बताई?
1: मुझे पता था तू माँ को कभी कुछ नहीं बताएगी। मम्मा बोले, नाक बाबा डोले, जो जी बोले
2: उसी को खा ले।
3: निखिल, क्या हुआ?
4: कुछ नहीं।
3: तुम उससे शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मना कर दो। मैं हूं तुम्हारे साथ। बी फर्म, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है।
0: द ब्रदर सिस्टर बॉन्ड इन दिस फिल्म टेंड्स टू बी द इमोशनल हार्ट बीट ऑफ द फिल्म।
3: क्या बात है निखिल?
4: लव यू अ लॉट प्रिंसेस।
3: लव यू टू भाई।
0: And it's portrayed with rare sincerity and depth. Unlike typical Bollywood depictions, where sisters often exist merely as supporting side characters, Anamika is portrayed with full emotional agency and complexity.
4: मेरे प्लॉट में कुछ प्रॉब्लम है। क्लेरली नहीं पता। उस दिन स्विम करने गया था। मुझे देखते ही सारे लोग पूल से बाहर निकल गए। टीम से भी निकाल दिया गया हूं।
3: आई डोंट अंडरस्टैंड। ब्लड में प्रॉब्लम है। I'm sure there's some misunderstanding.
0: She isn't just the sister who ties Rocky, but the one who stands her ground and fights for her brother's dignity.
5: आप क्या हम सबको मारना चाहते हैं? ये शर्म। अब तेरी वजह से हम किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकते।
0: When her brother Nikhil, who is a state-level swimming champion, is diagnosed with HIV and faces societal ostracization, Anamika remains steadfast.
3: I know. Today, what is it?
4: What
3: is it? हाथ आगे बढ़ाओ।
4: क्यों?
0: Helping him rebuild a life grounded in dignity.
3: मेरा गिफ्ट।
4: तुम अब भी कितनी लालची हो, हाँ?
3: और तुम अब भी कितने कंजूस हो?
6: ओए तेनू भी सब मेरे नाम तो जानेंगे। सरजीती भैण बाबा, सरजीती भैण।
0: Rocky isn't just a thread, it's a promise. And Dalbir Kaur lived it every single day. Starring Randeep Hooda and Aishwarya Rai Bachchan, the film showcased the story of a sister's undying love and protective nature as she goes to the tremendous extent to save her brother.
6: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀਵਾਰ ਫੌਂਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
7: ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਤ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾ ਤੋ।
6: ਓਏ ਹਮਾਰੀ ਕਿਆ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸਤਾ ਗਿਨ ਰਿਹਾ। फिर मिनता करोगे ना तार वापस नहीं आऊंगा। सुख है ना, कल्ले पाल नहीं फिर दोनों कुड़िया।
7: हाँ जी, तुम फिक्र ना करो, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
8: और नहीं तो क्या, अब तरस बाहर खड़े खड़े।
6: अरे तुम लोग तरसोगे, बोल रहे हैं। एक दो तीन चार
8: पाँच छह सात आठ नौ दस, जा खसमड़ खा।
6: ठीक है फिर, याद रखी, जा रहे हैं। ओके जी, आंडिया गवांडिया नू प्यार और वंडिया नू।
7: बैठ जी, देखो
8: बेशर्मा, आप तेरी खैर नहीं।
6: ओए दिल्ला करिल्ला रख ले।
0: The film depicts the real-life struggle of Dalbir Kaur, Sarabjit Singh's elder sister, who dedicated her entire life to ensuring her brother's release from Pakistan.
9: देश जितनी बड़ी नहीं है, मेरे पास एक ही मुद्दा है, एक ही पाई है मेरा।
0: Her unwavering fight lasted 23 years.
10: इंसानियत वाला रिश्ता है जी, पर अफसोस, वो हमारे मुल्कों में चलता कहाँ?
0: But her brother was cruelly killed by inmates just before his release. This film is surely a powerful reminder that a sister's love knows no borders, no limits, and definitely no fear.
11: दुनिया में घूम रहा है आजाद।
12: क्या रे
13: शर्ली, शर्ली, शर्ली, शी इज ऑलराइट। ये तो ठीक तो है, शी इज ओके।
0: जोश इज अ राउजिंग मिक्स ऑफ ड्रामा, इमोशन एंड एंटरटेनमेंट।
12: तेरे को फाइट के बीच पहले का क्या जरूरत था?
14: मेरे को डर लग गया था मानसी।
12: डर कैसा, कितना फाइट तो देखी है ना तू पहले, डर क्या?
14: तेरे को कुछ हो जाता तो
12: क्या होएगा मेरे को?
0: A story about fears, loyalties, hidden heritages, and ultimately the power of family and love to heal even the deepest rivalries. The movie delves deeper in the lives of Max, played by Shah Rukh Khan, and Shirley, portrayed by Aishwarya, who are twins living in Goa, whose bond is unbreakable and protective. Shirley's secret love for Rahul, who is the brother of Max's arch-enemy, ignites tension. Max erupts, torn between loyalty and love. The siblings reconcile, marriage heals rivalries, and their brother-sister unity becomes the emotional heart of this action drama.
12: ये केक अपना हाथ से वहाँ पर पहुँचाने का क्या है? लेकिन साला अगर हाथ ही नहीं रहता।
0: The Khalid Mohammed directorial Fizza stands out as a socially relevant film that addresses complex issues with sensitivity and depth. This is a poignant film set against the backdrop of the 1993 Mumbai riots. It follows Fizza Ikramullah, played by Karishma Kapoor, and her journey as she embarks on a relentless search for her brother, Aman, portrayed by Hrithik Roshan. And when she finally reunites with him, she discovers that he has joined a militant organization, leading to a tragic confrontation that tests the limit of filial love and moral boundaries.
15: हथियार फेंक दे अमन, ये सब क्या हो गया अमन, क्या हो गया?
16: हमारी खुशी छिन गई अब, शायद हमारी हंसी को नजर लग गई।

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
1: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
3: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
4: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
1: अब मैं क्या ही बोलूं?
5: परिवार अटूट भरोसा।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: And now we have some visuals coming in from the Prime Minister, who's celebrating Rakhi with students, school of students. He's in a school and tying Rakhi to the Prime Minister. And Prime Minister Modi is seen high-fiving and giving out smiles at the Rakhi celebration. This is the Rakhi celebration which is happening at PM Modi's house as well. You can see it's all high-fives and smiles and more during today's Raksha Bandhan celebrations at 7 Lok Kalyan Marg. Prime Minister Modi on this occasion is meeting students and he is interacting with them. You can see a lot of them are tying Rakhi to him as well. He's chatting with them. He's also giving out smiles and high-fiving with a lot of these students. They're in uniform, so they're these school students, but you can see that a lot of these girls are tying Rakhi to the Prime Minister. And these are the visuals that we're getting in of the Rakhi celebration at PM Modi's house as well.
1: ये कौन आया है? अच्छा मैं आई हूँ.
2: Advance happy birthday.
1: अच्छा advance में? तुझे मालूम है date?
2: 17 September.
3: मैंने आपके लिए ये राखी बनाई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप एक नेचर लवर हैं। हमारा स्कूल एनवायरनमेंट डे पे आपके इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम पे पेड़ लगाता है। आप हमेशा कहते आए हैं AI फॉर ऑल, तो आज मैं आपको ये राखी बांधने के समय यह वादा करती हूँ कि मैं AI को जिम्मेदारी से सीखूंगी, समझूंगी और उसका उपयोग लोगों की मदद के लिए करूंगी।
1: शाबाश। सारे दांत कहाँ चले गए?
4: सर, मैंने आपके द्वारा लिखी हुई एग्जाम वॉरियर्स बुक पढ़ी थी और मुझे वो बहुत पसंद आई। उसने मेरे मैं पहले एग्जाम से बहुत डरती थी, अब मैं एग्जाम वॉरियर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम्स बस मेरी करंट नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। मम्मा बोलती हूँ कि तू इतनी पीती नहीं होगी, सब्जी खाने के लिए कहती होगी खाती नहीं होगी। अच्छा करेला नहीं खाती?
2: तो मेरे भाई भी नहीं खाता।
1: कोई नहीं खाता।
2: हैप्पी रक्षा बंधन।
1: हैप्पी बहुत
2: आशीर्वाद।
1: महाकाल का दर्शन कब ले जाओगी? मुझे महाकाल का प्रसाद ले आना, आओगे ना?
5: 25 वर्ष के कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाया है, विकसित भारत का सपना लेकर देश को आपने सजाया है।
6: मेक इन इंडिया की हुंकार से उद्योगों का बल बढ़ता है, भारत अब अपने ही हाथों से अपना भविष्य लिखता है।
1: पूरा वंदे मातरम इसमें लगा है
2: सर, इसके पूरे सारे।
1: शाबाश, बहुत बड़ा काम किया
2: आपने।

0: are watching India Today.
1: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: One catastrophe. Rescue teams racing against time. Then a brief halt after a fresh warning. Another threat is beginning to unfold in flood-ravaged Nepal. A day after China warned that another glacial lake outburst could be imminent, India Today has been tracking the developments from ground zero, bringing you every detail of these unfolding warnings.
1: Nepal is now on a risk of another severe calamity after China alerts Nepal for another glacier lake formation in the confluence. Major two rivers where till 27th of morning, nearly 2 million cubic water has been collected, and another 3 days it is likely to reach up to 5 million cubic. And in that case, even these lakes would breach the barrier, and in that case you will see all these river terrain of Nepal would be flooding with the severe debris.
0: People living in vulnerable areas have been told to evacuate. Rescue teams had been asked to stand down as authorities closely monitor the rapidly rising water levels. The administration is on high alert. Here is the moment where the rising water started creating panic among the locals.
2: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही चेतावनी दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि बाढ़ आ सकती है, ये देखिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये तमाम सारे लोग अब यहाँ से नीचे के इलाकों से आगे की ओर जाना शुरू कर चुके हैं और चीन की ओर से भी चेतावनी दी गई थी कि जो लगभग अब तक 20 लाख क्यूबिक मीटर का पानी जमा हो चुका है और यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं और ये तमाम लोगों को अब यहाँ से आगे, ये नुआकोटी का वो धुंडे इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही की हमें मंजर देखने को मिला था, आखिरी वो शहर जो बर्बाद हुआ, और उसके बाद अब लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाए। ये पुलिस है और लगातार लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ से निकलिए, आगे की ओर जाइए। अब तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है कि खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है, ऊपर से पानी आने की गुंजाइश फिर से है।
0: But behind this latest threat lies a deeper and more disturbing reality, the extreme fragility of the Himalayan ecosystem. The region is increasingly exposed to a dangerous combination of unstable terrain, glacial activity, and seismic forces, creating the conditions for sudden and devastating disasters.

0: So this region is always a fragile region. This is a Himalayan region, and there is a lot of tectonic activities going on underneath. And if you just look at the higher terrain also, they are not like rock solid. They are very fragile.
1: The collapse of the glacier on Wednesday had left behind a massive wall of ice and rock debris, creating a natural blockade. With the accumulated water still seeking an outlet, the force of the flow has begun carving through new and unpredictable paths along the Bhote Koshi River.
2: ये त्रिशूली नदी है और ये ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे पहाड़ों की ओर से तो आगे जो रुसवा और आगे फिर तिब्बत का इलाका शुरू होता है तो ऐसा हो कि भटकोशी के साथ पानी अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी पानी का स्तर बढ़ सकता है और ऐसे में चेतावनी ये दी गई है कि लोग इन किनारों से हट जाएं। स्थिति हुई तो चेतावनी ये भी दी गई है कि कहीं ये पिछले यानी वेव टू जो है वो वेव वन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तीव्रता ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर तबाही बढ़ सकती है।
1: What began as one catastrophic flash flood has now opened up the possibility of another. Though rescue ops have resumed again, the situation still remains precarious. As another glacial threat emerges, the Himalayan disaster story may be far from over. Nature has already shown its fury. The question now is, how much more is yet to come? With Ashutosh Mishra and Ground Zero Nepal, Bureau Report, India Today.
3: Because of a second flood alert that has come, rescue operations have been stopped, halted for now, paused for some time after a certain lake has started to overflow from the border areas. Authorities in Nepal have stopped they've paused the rescue operations for the next 90 minutes at least because the report said that there's an immediate flooding that can happen. And you, of course, cannot hamper the life of the rescue personnel also who are risking their life to save as many people as possible. The death toll already has risen to at least the confirmation of 587 people in Nepal. Over 1,400 people are still missing at least. This is estimated. Many of them tourists. For example, the caring office, this is on the Nepal-China border. Pankaj Das is joining me from Nepal for the latest. Pankaj, abhi kya information aa raha hai? What can you confirm for us? Why have the rescue operations been halted for now?
4: ये जैसे ही चीन के तरफ से नेपाल को ये जानकारी दी गई कि वो जो दूसरा ग्लेशियर वो भी फटा है, इसलिए जो है नेपाल में तत्काल सरकार ने निर्देश दिया कि जो भी यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम लगी है उनका काम तत्काल रोक दिया जाए। एहतियात बरतने के लिए जो है सरकार ने सभी ऊपर रसवा डिस्ट्रिक्ट धादिंग नुआकोट से लेकर नीचे नारायणी नदी का जो किनारा है चित्रन डिस्ट्रिक्ट वहां तक का रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए रोक दिया कि किसी भी तरह की यदि क्योंकि ये जो बाढ़ की तीव्रता पिछली बार आई थी वो कुछ सेकेंडों में ही कई किलोमीटर उन्हें पार कर लिया था, इसलिए जो है एहतियात के तौर पर रोक दिया गया। हालांकि सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि अभी फिलहाल उस तरह का खतरा नहीं है, लेकिन सतर्कता अपनाने के लिए आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है।
3: ये बता सकते हैं पंकज अबाउट द एरियाज लाइक जो त्रिशूली रिवर के पास है, द खैरुंग बॉर्डर एरिया जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस थे एंड स्पेशली इन रसुवा एरिया, क्या वहां पे कोई कनेक्टिविटी कॉन्टैक्ट हो पाया है मिसिंग पीपल से और द एरिया स्टिल आउट ऑफ टच?
4: रसुवा के कई सारे इलाके जो है अभी भी संपर्क के बाहर है क्योंकि पूरे रसुवा डिस्ट्रिक्ट का जो है बाकी हिस्से से जो है नेपाल से काठमांडू से उसका संपर्क टूट गया, क्योंकि हम लगातार ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि 40 किलोमीटर सड़कें हैं, 43 ब्रिजेज हैं, इससे ज्यादा सस्पेंशन ब्रिज जो रसुवा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों को जोड़ती है वो सब इस बाढ़ में बह गए हैं, इसलिए रसुवा से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल वहाँ के जो चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो सैटेलाइट फोन के जरिए काठमांडू के संपर्क में, लेकिन वहाँ पहुंचने का कोई नहीं है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी कई बार रेस्क्यू का वो प्रयास किया गया और कई ट्रायल किए गए हेलीकॉप्टर को ऑनलाइन कराने का, लेकिन वो कई सारे इलाकों में अभी ये संभव नहीं हो पाया है। लॉन्टन एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जहाँ पिछले 3 दिनों से 18 जो है वहाँ काम करने वाले मजदूर वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वहां अभी तक उनको बचाया नहीं जा सका, क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंडिंग का क्रेन वहां पर जगह नहीं है और एयर ड्रॉप भी नहीं कराया जा सकता है रेस्क्यू टीम को वहां पे।
3: Pankaj, thank you very much for tracking and bringing us all the ground reports. He's telling us about the areas that still cannot be connected with. Time is of essence here. For now, operations have been halted because another flood alert has come. But many are asking, what exactly set off this devastating chain of events that led to this massive loss of life? Was it only a natural disaster? Did it also have a certain urban development issue as well? It began high in the Himalayas, an avalanche that triggered a deadly cascade of ice, rock, mud, debris and water, of course. The disaster began with this avalanche on a snow-covered mountain. The avalanche sweeping down the Lendekhola River, a river that runs along the Nepal-Tibet border. That is what then carried huge volumes of ice, rock, debris and started to wipe off anything that came in the path. That debris also triggered a massive landslide and mudslide, slamming into the Gyarong port area, surging toward the Nepal border. And remember that nature does not understand man-made border areas. The mudslide travelled nearly 20 kilometres at speed of up to 180 kilometres per hour, triggering a powerful flash flood, sweeping away everything. But the danger did not end with that. The debris has also formed a barrier lake upstream. Why is that a concern? If that lake continues to fill up and suddenly releases its water, that can again generate another powerful surge and into areas that are already devastated and where the rescue operations are currently on. And that is why the teams in China, in Nepal, are constantly tracking about what's coming up next. And also it's important to understand what happened, what is happening, what can happen in the days to come. I spoke a short while back to environmental engineer from Nepal, Mr. Bhushan Taludar. Here's what he said and some important suggestions that he gave. Another threat has come, I believe, from the authorities. Evacuations are being done in some areas, including Nuwakot and Trishuli and more. Is this second threat to you looking like a bigger threat? It could be similar. How are you analyzing this one?
5: It's very difficult to say right now. One thing is clear that yesterday itself, or even day before, satellite images did show that there was a lake that was forming with the river being blocked, and there was
3: yes.
5: possibility of that lake breaking any time. And now we hear that it has broken and the flood is coming. How big is the flood? We're not sure. We anticipated this coming. We're not sure what the extent of the damage will be. One thing is clear, because a lot of this area has been evacuated already, so hopefully the casualties will be less.
3: But that's what many are asking. Help me understand this, Mr. Taludar. Couldn't a similar warning have come earlier? Many Nepalese journalists are pointing that out. If that had come, was there a possibility of it? If that had come, it could have saved at least a lot of lives.
5: I think it's difficult to say, because did the Chinese authorities or the Nepalese authorities know about this? Very difficult, but because it wasn't just a glacier, lake outburst flood. If there was a big glacier lake that was going to burst, then yes, we would have known it in advance. But this was a big avalanche that suddenly came down 2 kilometers and then, bang on that river. And that created this big wave. That would be very difficult to predict also. But we do know that incidents like this is increasingly happening in this climate changed world, but exactly where it's going to happen.
3: What can be done to at least ensure to save human lives next time, especially in these areas? What is it? Is there a solution to this as well? Or we are just dependent on nature's fury?
5: No, we're not depending on nature's fury. Three aspects of, when you talk about climate change, people talk about reducing emissions. That is absolutely important.
3: Okay.
5: While we appreciate the, generosity shown by, international, community and so on, that has to come in terms of, addressing the climate crisis as well.
3: Mm.
5: There is a loss and damage fund that needs to be, shored up so that these kind of incidents,
3: okay.
5: the damages can be addressed, one. Second is adaptation, as in early warning systems. When we do build infrastructure, build it properly and in terms of, sustainable infrastructure. And third is, once this happens, we need to be able to ready to respond quickly. All of this has to happen in parallel. We can't just say that one thing has to happen. And of course, at this time of need, emergency response is what we need right now.
3: It is not depending on secondary sources. India Today's Sweta Singh and Ashutosh are on the ground. And this is a special report from Sweta Singh about right where the danger zone is. Let's take a look at that.
6: चीन की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसके बाद यहाँ पर उन सभी कनेक्टेड नदियों का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे सामने जो आप नदी देख रहे हैं इसी में जब वो बाढ़ आई तो ये पूरा त्रिशूली बाजार और नुआकोट का पूरा एरिया फ्लड हो गया था। उनमें से अनेकों अनेक अभी भी मिसिंग है। सरकार की तरफ से यहाँ पर जरूर 1500 का आंकड़ा दिया जा रहा है। लोग बहुत सारे आपको अलग अलग यहाँ पर फिगर्स देंगे, लेकिन अब एक बार फिर इस नदी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और पानी का आवेग बढ़ रहा है, इसीलिए लोगों को इधर रोक दिया गया है सबको कि इसके आगे कोई फिलहाल नहीं जा सकता है। यानी इस पूरे एरिया में अभी बहुत बड़ा खतरा है। अभी भी जो पानी जब से यहाँ पर हमें भी अनाउंस कर क्योंकि पानी बढ़ रहा है, ये बेहद खतरे की जगह, और जो घर हैं अधिकांश उन्हें अभी खाली कराया जा चुका है इस पूरे एरिया के, यानी कि नदी के साथ चलते चलते वाला जो पूरा इलाका है, पूरा हिस्सा है, उस सबको खाली करते हुए चला जा रहा है। क्योंकि किसी भी समय अचानक ऐसा ही हुआ था, एक मिनट के भीतर जहाँ पर पानी भर गया था, पानी आ गया था, और फिर यहाँ पर परिस्थितियाँ बेहद भयावह बन गई थी। तो आज भी ये कहा जा रहा है कि किसी भी समय आप कुछ भी होने की आशंका है, इसीलिए हायर ग्राउंड की तरफ जाए, जितनी ऊंचाई की तरफ, यानी कि नदी का जो लेवल है वाटर लेवल है, इसकी तुलना में जितनी ऊंचाई की तरफ जा सके उतनी ऊंचाई की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है।
3: 35 motorable bridges, 45 suspension bridges and 40 kilometers stretch of road that was completely devastated and destroyed by this deluge. Behind me you can see one such bridge which has been completely destroyed by this. There are trees, there are parts of the trees that have fallen onto it. There is entire debris that is covering this bridge, while one part of it you can see

हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: protest and agitation, there were always police firing and there were always cases of death. Kai mare hai, ek do nahi hazaron mein. Lekin is jantar mantar protest mein ek student ya insaan ka jaan ko jaane nahi diya ki ye bada baat nahi hai itna bada protest mein. वो तो जब बोलो जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसने के लिए किया तब पुलिस ने रोका, तो रोकने के लिए तो फिजिकली रुकना पड़ेगा ना, और क्या पुलिस चुपचाप बैठे और तुम जाके पार्लियामेंट को तोड़ो? कुछ चीज है, बेसिक है, जानना पड़ेगा उसको. ये होम मिनिस्टर का इसमें ऑर्डर का जरूरत नहीं है, पुलिस का मैनुअल होता है कि जब आपको 144 डिक्लेयर करता है या कुछ रेस्ट्रिक्शन करता है और वेन एवर द कोर्ट सेज दैट द प्रोटेस्ट इज इलीगल और बियॉन्ड अ पॉइंट the area is protected area, then police will act as per the law, as per the manual. The home minister doesn't give the order for firing. It's a basic baat sabko malum hona chahiye. But overall jo management ka responsibility government ka bas jaate hain. That is why I said, if you just open up the old cases of agitations in India, thousands of people were killed by the police firing, and all were under Congress regime. And in this protest, not a single life was lost. And that is a professional management of Delhi police. Police ko agar hum gaali dene lag jayega, to kal suraksha kon dega? Kuch bhi hota to police ko hum gaali dete hain. Raat ko chori hone se bhi police ko bolega. Aur kahi law and order problem ho gaya, police ko bulayega. Police hamara suraksha ke liye hai. और पुलिस को हम दुश्मन जैसे बात करते हैं, दी वे पुलिस पीपल आर थ्रेस्ट. और तुमको प्रोटेस्ट करना तो शांति से प्रोटेस्ट करना चाहिए ना, तो पार्लियामेंट में क्यों मार्च करना चाहते हैं, पुलिस को क्यों मार रहे हो? तो सो पुलिस ने भी रिस्ट्रेन किया ना, जब पुलिस को मारते हैं तो पुलिस भी उसको बल प्रयोग करता है. इसलिए मैंने कहा कि संयम बरतना चाहिए सबको. लेकिन इस प्रोटेस्ट को लेकर के जो बार बार कहता कि अमित शाह जी ने गोली मारने का ऑर्डर दिया है, अरे जब इंसान का मौत नहीं हुआ और होम मिनिस्टर फायरिंग का ऑर्डर कभी नहीं देते हैं, ये नियम ही नहीं है.
1: इवन इन दिस इट्स द डीसीपी, द डीसीपी हैड ऑर्डर.
0: तो राहुल गांधी और ये लोग क्यों बोलते हैं अमित शाह ने फायरिंग करने का बात ऑर्डर दिया है? इस तरह का बात नहीं करना चाहिए ना, ये बच्चे वाला बात और बिगाड़ने वाला बात नहीं करना चाहिए. जब आप मेच्योर से बात करते हैं, इफ यू आर लीडर ऑफ ऑपोजिशन देन यू शुड बिहेव लाइक लीडर ऑफ ऑपोजिशन. योर लैंग्वेजेस मस्ट हैव वेटेज. हल्के पुलके में तस्वीर लेकर के वहां पार्लियामेंट में आएगा, भगवान का फोटो लेकर के वहां जमीन पे रखेगा, ये सब नहीं करना चाहिए. बहुत खराब लगता है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोगों ने बनाया है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल एंड वी आर हियर टू सर्व द पीपल. डेमोक्रेसी मत मीन्स पीपल. और आप इलेक्टेड आदमी होकर के ऐसे बातें करते क्या सीखेगा लोग?
1: I'm going to talk about the parliament, sir, but I'll ask you one last question on that. Is there regret that pellet guns were used because some of them did hit young students?
0: वो डिटेल तो सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रहा, तो मैं तो कैसे कह सकता हूँ? See, anything which is under investigation or proceedings going in the court, then we should not make comments on the details. I only said कोई नहीं मरा है क्योंकि इतना बड़ा जो एजिटेशन में कोई जान नहीं गया है, तो ये एक रिलीफ अच्छी बात है ना. तो इतना ही मैं बोलता हूं. अब डिटेल मैं कैसे बताऊं? डिटेल बोलने का मेरा अधिकार ही नहीं है. कोर्ट विल लुक इनटू द मैटर एंड द अथॉरिटीज, पुलिस वगैरह कोर्ट में बताएंगे क्या है.
1: सर, यू वाज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर रिजिजू एज वेल एज द गवर्नमेंट एंड द ट्रेजरी बेंचेस, डिड यू डू ऑल दैट इट कुड टेक टू मेक श्योर दैट द मॉनसून सेशन वॉज नॉट अ वॉश आउट बिकॉज इट वॉज?
0: यस, इट डिड हैव अ negative impact on my understanding about the opposition, because I thought, after all, we are all responsible people to run our parliament. Whenever I have gone out to the opposition parties, I have reached out to everybody. In a private note, all are okay, but then when they have taken a stand, then they stick to that. They have taken a stand, the Congress and the Samajwadi, that they will not let Parliament function. So rest are all just excuses. They had decided not to let the Parliament function. So I don't think that any extraordinary appeal would have had any impact.

0: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
1: Your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
3: Money, money, money, money, every month.
4: Soch batlo aur bank bhi.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: One catastrophe. Rescue teams racing against time. Then a brief halt after a fresh one. Another threat is beginning to unfold in flood-ravaged Nepal. A day after China warned that another glacial lake outburst could be imminent, India Today has been tracking the developments from ground zero, bringing you every detail of these unfolding warnings.
1: Nepal is now on a risk of another severe calamity after China alerts Nepal for another glacier lake formation in the confluence. Major two rivers where till 27th of morning, nearly 2 million cubic water has been collected, and another 3 days it is likely to reach up to 5 million cubic. And in that case, even these lakes would breach the barrier, and in that case you will see all these river terrain of Nepal would be flooding with the severe debris.
0: People living in vulnerable areas have been told to evacuate. Rescue teams had been asked to stand down as authorities closely monitor the rapidly rising water levels. The administration is on high alert. Here is the moment where the rising waters started creating panic among the locals.
2: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही चेतावनी दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि बाढ़ आ सकती है, ये देखिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये तमाम सारे लोग अब यहाँ से नीचे के इलाकों से आगे की ओर जाना शुरू कर चुके हैं और चीन की ओर से भी चेतावनी दी गई थी कि जो लगभग अब तक 20 लाख क्यूबिक मीटर का पानी जमा हो चुका है और यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं और ये तमाम लोगों को अब यहाँ से आगे, ये नुआकोटी का वो धुंडे इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही के हमें मंजर देखने को मिला था, आखिरी वो शहर जो बर्बाद हुआ, और उसके बाद अब लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाए। ये पुलिस है और लगातार लोगों को कह रही है कि यहाँ से निकलिए, आगे की ओर जाइए। अब तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है कि खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है, ऊपर से पानी आने की गुंजाइश फिर से है।
0: But behind this latest threat lies a deeper and more disturbing reality, the extreme fragility of the Himalayan ecosystem. The region is increasingly exposed to a dangerous combination of unstable terrain, glacial activity and seismic forces, creating the conditions for sudden and devastating disasters.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: से अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी सभी यात्रियों को मदद करें हमारी, हम लोग सब घर वाले सब परेशान हैं इस चीज से।
1: Shubhashree Chakraborty, who hails from Kolkata, had traveled towards the Nepal-China border as part of a Kailash Mansarovar pilgrims group. She last spoke to her husband after completing immigration formalities.
2: मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था, हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है, ना उनसे कोई फोन पे बात हो पा रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, तो कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हमको कोई पता भी नहीं चल रहा है।
1: Summer Mondol, a resident of Shantinagar Bo Bazar in Siliguri, had left for Mount Kailash on August 16. His last conversation was on Tuesday, when he told his family he was unwell and planned to return to Kathmandu. Since then, his phone has been unreachable.
3: Kailash Yatra ke liye nikal gaye the. Uske baad to hum log contact kar rahe the. Video call bhi ho raha tha. Dada ne bola hai mujhe theek nahi lag raha hai. Vomiting ho rahi hai. तो फिर उसने एजेंसी के लोग को बोला है हमको छोड़ दीजिए, काठमांडू तक छोड़ दीजिए। तब कल से कोई बातचीत नहीं हुआ, हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे।
1: An NRI couple from Gujarat, Vimal and Jamina Patel, remain missing after traveling to Nepal. Their last contact with the family came days ago. Since then, their phones have been switched off.
4: वो नेपाल गए हुए थे, वहां से वो चाइना के लिए वो इमिग्रेशन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए वो इमिग्रेशन के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है उसका। मेरा कॉन्टेक्ट तो कल सुबह से ही नहीं हुआ है कुछ भी।
1: फ्रॉम सूरत, 3 कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स हैव बीन अनट्रेसेबल फॉर अराउंड 24 आवर्स।
5: पिछले 24 आवर्स से मिसिंग है, उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमने भी यहाँ से उनका संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका संपर्क नहीं, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे। जो टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी है उसका फोन नहीं लग रहा, तो इसके रिगार्डिंग हमने नेपाल के कंट्रोल रूम में ये सूचना भेजी हुई है। कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त मिलती है और किसी को कोई प्रकार की सहायता की जरूरत है, तो हम उनको सहायता पूरी करेंगे।
1: In Trishuli, Usha Chaurasia and her son Rahul, originally from Balia, have been missing since the disaster.
6: सुबह 9 बजे फोन आया, तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा है। बड़ी मम्मी और राहुल जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: The flood waters may be receding, but for these families, the nightmare is far from over. As rescue teams continue the search in Nepal, every passing hour deepens the anxiety, and every survivor found brings a flicker of hope for those still waiting back home. Bureau Report, India Today.
7: And joining us now are Praveen and Mamta Mittal. They are family members of missing Dr. Meena Gupta, a British citizen of Indian origin, who had traveled to Kailash Mansarovar on August 14th, along with 77 members of the Isha Foundation. मुझे ममता आपसे जानना है कि आपकी आखिरी बार मीना गुप्ता जी से कब बात हुई थी?
8: मीना गुप्ता जी से मेरी संडे को बात हुई थी। मैंने वीडियो कॉल पे हमें मानसरोवर की थोड़ी फोटेज दिखाई थी और हमें दर्शन कराए थे।
9: मंडे को
8: भी कराए और संडे को, दो दिन से लगातार दर्शन कराए थे। अब बात करने के लिए वो मना कर रही थी कि यहाँ पे मेडिकल क्वेश्चन चल रहा है, तो अब बात मत करो, बस दर्शन करो।
9: पापा
8: से बात हुई थी 25 को शाम को 7 बजे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई।
7: तो वहां से कुछ खबर आपको मिल रही है? प्रवीण जी और ममता जी, आप लोग दोनों से ये सवाल है, कोई रिपोर्ट आप लोग के पास है कि अभी क्या क्या है स्थिति वहां पर? उनके साथ जो क्योंकि आपने ये बताया कि ये जो पूरा ग्रुप था उसमें 77 लोग थे, 77 मेंबर्स, तो आप मीना गुप्ता जी के अलावा आपने किसी और मेंबर से बात करने की कोशिश की, कुछ उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की?
9: और किसी मेंबर की हमारे पास जानकारी नहीं है,
10: सदगुरु जी के जो टीवी में जो आया था उसी से हमको ये जानकारी ही कि वो 77 मेंबर में वो भी मीना भी

0: उस समय जब ये फ्लैश फ्लड आया तो उस समय 77 मेंबर के साथ इमिग्रेशन सेंटर में अंदर ही मीना भी थी। ये हमको जानकारी लगी, तब से हम अपनी तरफ से जानकारी लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं लग रही है। मिसिंग लिस्ट में मीना गुप्ता का नाम आ रहा है।
1: उनके परिवार में और कौन-कौन है ममता जी?
2: उनकी शादी में उनके हस्बैंड की तीन बेटियां हैं जो यूके में ही रहते हैं।
1: तो उन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है?
2: उनसे बातचीत हो रही है, वो भी बहुत परेशान हैं और बहुत रो रहे हैं।
1: ये परेशानी की बात है क्योंकि अभी पता नहीं है कि वो कैसी हैं, तो इसलिए मिसिंग लिस्ट पर्संस लिस्ट में है। मुझे उनके बारे में और बताइए। आपकी आपने बताया कि जब वो उन्होंने 2 बार वीडियो कॉल पर आपके दर्शन कराए, तो किस तरह की बातें होती थी? वो अकेले क्यों आई दर्शन करने के लिए? उनके और परिवार में वो लोग और क्यों नहीं गए उनके साथ?
0: एक्चुअली पिछले साल उनके हस्बैंड गए थे, दोनों का ही जाने का प्रोग्राम था, तो मीना का वीजा उस समय नहीं लग पाया, तो फिर वो अकेले गए थे। इस साल फिर मीना गई थी। मीना ने मम्मी पापा को बोला था साथ में जाने के लिए, लेकिन ये लोग मतलब नहीं जा पाए, मतलब थोड़ा एज फैक्टर भी है, तबीयत भी उतनी सही नहीं रहती है, तो ये लोग नहीं गए। तो मीना फिर अकेले गई थी, और वो ईसा फाउंडेशन के साथ और भी जगह टूर वो पहले कर चुकी है, तो उससे जुड़ी हुई है, सदगुरु से उससे जुड़ी हुई है, तो उसी में गई थी, उसी के साथ फाउंडेशन के साथ ही गई थी।
1: तो उनके पेरेंट्स को पता है क्या हुआ है नेपाल में?
2: जी सॉरी आवाज नहीं है,
1: जी
2: मुझे पता है।
1: मैं पूछ रही हूँ कि अमीना जी के पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को पता है कि वो नेपाल
0: हाँ जी,
1: में
0: सारे लोग
1: मिसिंग है?
0: परेशान हैं, अपनी अपनी तरफ से सारे सब जगह खबर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। मीना का भाई भोपाल में है, एनएचडीएल में, वो भी अपनी तरफ से सब जगह मेल भी कर रहा है, फोन कर रहा है, ढूंढ रहा है। मम्मी पापा दिल्ली में हैं, उनके चाचा हैं दिल्ली में, वो भी सारे लोग प्रयास कर रहे हैं अपने अपने तरफ से, जिनकी जहाँ अप्रोच हो सकती है और है। उनके हस्बैंड यूके में बैठ के वहां से भी सारी जगह अपना भाई मेल डाल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मिसिंग लिस्ट देख रहे हैं बार बार। हम लोग भी यहाँ से जहां तक हो सक रहा है हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली। हाँ
1: क्या फैमिली का कोई काठमांडू जाने की कोशिश कर रहा है?
0: जी हाँ, काठमांडू जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल वो आया कि 72 घंटे का अलर्ट जो आया कि मतलब फिर से ये फ्लड आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा रुक गए कि चलो ठीक है, 2 दिन बाद फिर मतलब प्रोग्राम बना के चलते हैं, नहीं तो जाने का प्रोग्राम था।
1: जी, तो कैलाश मानसरोवर जब वो जा रही थी, उससे पहले उन्होंने क्या-क्या आप लोगों से बात की थी? आपकी कोई उनकी कोई ऐसी बात जो आपको आपके दिल में अभी भी बैठी हुई है ममता जी?
2: वो हमें कह रही थी कि तुम भी नेपाल तक आओ, अपन नेपाल मिलेंगे और अपन दर्शन करेंगे वहां पे, और फिर अपन साथ में दर्शन करेंगे, उन्हें ऐसा बोला था। लेकिन मेरा प्रोग्राम अभी नहीं बन पाया, ना मम्मी पापा का बन पाया, किसी का नहीं बन पाया था, इसलिए वो अकेली गई थी।
1: जी
0: उसने पूरे परिवार को दर्शन कराए थे, समझिए कि मीना ने अपनी बुआ जी फूफा जी वगैरह को, हम लोगों को, सब लोगों को दर्शन कराए थे वहां से वीडियो कॉल कर करके। अपने ताऊ जी के परिवार में, चाचा के परिवार में, सबको दर्शन कराया था, सभी को देख देख के दर्शन कराया था उसने।
1: आपकी क्या प्रार्थना होगी? आप क्या सोच रहे हैं कि अभी वो सेफ हो?
0: हम बिल्कुल यही प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि जहां भी है सेफ है, और यही प्रे है कि जल्दी से जल्दी घर वापस आए, जल्दी से जल्दी हमें मीना के बारे में जानकारी मिले।
2: और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जहां पे भी हो उसके पास तक राहत सामग्री पहुंच जाए, ताकि उनके पास खाने पीने का कुछ तो हो। 3 दिन हो गए, उसके पास कुछ है कि नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं अगर कहीं पे वो फंसी हुई है तो।
1: जी, और कुछ बोलेंगे आप? ये बहुत ही मुश्किल का समय है आपके परिवार के लिए।
0: जी
1: आप एम्बेसी से भी टच में हैं? उन लोग भी बता रहे हैं, ईशा फाउंडेशन वालों से भी आपकी बातचीत चल रही होगी?
0: जी हमारी डायरेक्ट यहाँ से बात नहीं हो रही, लेकिन संजीव जी की बात और सुभाष जी की बात हो रही है, ईशा फाउंडेशन से मीना के हस्बैंड के और भाई की बात हो रही है,
1: जी
0: जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं बीच बीच में।
1: चलिए, ममता मित्तल एंड प्रवीण मित्तल फैमिली

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: चल हाथ ला।
1: मैं नहीं बंधवाता राखी वाखी।
0: चुप।
1: क्या जी जी, ये क्या बात हुई? आप लोगों को आज ही वापस जाना है क्या?
0: हंसते खेलते ये दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला।
2: Directed and co-written by Vasan Bala, Jigra is a visually intense action thriller starring Alia Bhatt as Satya and Vedang Raina as Ankur. The movie defines the sibling bond by loss and loyalty. Where Satya becomes the fearless protector, driven by drama and love to challenge moral boundaries.
3: देखो, देखो मुझे। मेरी राखी पहनता है ना तू? तू मेरे प्रोटेक्शन में है।
2: When Ankur is framed for a crime and imprisoned abroad. The film is visually intense and occasionally stirring. Their bond anchors the narrative and jailbreak chaos.
4: Yeah?
5: Smetani sahab ke office mein aag lag gayi hai.
4: What? Aag?
2: Yet, while the emotional core is compelling with flashbacks, shared memories or tender moments that could have deepened their connection throughout the film.
6: बताओ अपनी बहन को।
7: मॉम प्लीज, मैंने कहा ना एक बार मुझे नूरी से बात कर लेने दीजिए।
6: मॉम,
2: दे मे बी हाई फ्लाइंग एलीट सिब्लिंग्स,
6: कबीर और नूरी
2: क्रूजिंग द मेडिटेरेनियन, बट कबीर एंड आयशा आर द पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिब्लिंग गोल्स।
6: हम क्या कर रहे हैं कबीर? हैव यू लॉस्ट योर माइंड?
8: लॉस्ट योर माइंड?
6: बोलो बोलो ना। मेरे घर में तो मुझे कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं है, तो तुम ही कुछ बोलो।
2: Priyanka played the stylish and accomplished businesswoman Aisha Mehra, whereas Ranveer played Kabir, who aspires to fly instead of running his father's business. They pick her, tease and support each other through rocky marriages and broken dreams. Their quiet camaraderie, especially during emotional breakdowns, proves that even amidst champagne parties and billion-dollar business deals, bhai behan ka pyar stays real.
9: जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा
6: इनकी शादी।
2: दिस फिल्म वेयर्स द ओकेशन इन इट्स टाइटल एंड हार्ट। अक्षय कुमार प्लेज अ लविंग ब्रदर वर्किंग टायरलेसली टू मैरी ऑफ हिज फोर सिस्टर्स।
10: आपको गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा।
11: 25 रुपए के गोलगप्पे के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे दे तुझे।
12: कितने सालों से इंतजार कर रही है तू इस आदमी का? कभी अपनी बहनों की शादी करेगा, कब तेरे से शादी?
2: ऑल वाइल बैटलिंग इमोशनल, सोशल एंड फाइनेंशियल प्रेशर।
13: 20 लाख एक लड़की की शादी के लिए बहुत ज्यादा। 4 बहनें हैं, डिस्काउंट तो बनता है।
14: जो वैरायटी लेके आए हो ना, कमीशन डबल बनता है।
13: कौन सा बैंक लूट के
2: लाऊं? इट्स अ टियर जर्कर फिल्ड विद मिडिल क्लास रियलिज्म, हेवी ऑन सेंटीमेंट एंड अ पावरफुल मैसेज अबाउट डाउट। Directed by Anand L. Rai, the film also stars Bhumi Pednekar in a lead role.
15: मेरी लोग हैं।
12: 8 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। रिटायर होने से पहले मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। 6 महीने तेरे पास, वरना कोई बढ़िया सा रिश्ता देख के ना इसको निपटा दूंगा। फिर याद करते रहना अपने बचपन का प्यार। अब नहीं रुकूंगा मैं, और दहेज देने के पैसे हैं मेरे पास।

0: The story of the film revolves around the joint family and its values and togetherness, who grow apart after a misunderstanding.
1: ये मुमकिन नहीं है प्रेम।
2: क्यों नहीं विवेक? बेटे हम तुम्हें और साधना को साथ लेकर लौटेंगे। आदर्श बाबू, राम किशन जी के परिवार के साथ खुशियों के इतने पल बिताए हैं, अब ये दुख के बादल घेरने नहीं देंगे। और फिर आज का दिन कितनी खुशी का दिन है, हैं? यहाँ आकर मौसी से पता चला कि हमारी साधना बेटी खुशखबरी सुनाने वाली है, तो बेटे ये खुशी बांटनी ही है, एक बार प्रेम के साथ चले चलो। आदर्श बाबू, विवेक से आप कहिए।
0: The timeless classic featured Salman Khan, Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Karishma Kapoor, Monish Behel, Tabu, Neelam, among others in pivotal roles.
2: बस मन नहीं है।
3: अंकल, एक भी नहीं।
2: अच्छा ठीक है, आधा खा लेते हैं।

0: The Priyadarshan directorial follows young Ali and his sister Zahra, who share a single pair of sneakers after Zahra's are lost. Their father, struggling with poverty and low-paying odd jobs, can't afford new shoes. And thus, the siblings scheme around their school schedule to share the shoes.
1: मैं बेटा ऐसे नहीं डरता, पर बाबा के पास पैसे नहीं हैं। हम एक तारीख के पहले कैसे नए जूते खरीद सकते हैं? मुझे लगा तेरे पेजे में ये बात आ गई होगी।
0: Amid financial struggles, Ali enters a foot race, hoping to win new shoes for Zahra. A beautiful, simple, and emotionally rich story which leaves you quiet and profoundly moved.
2: Kaise mila?
1: Mata miss ne diya tha.
2: सच्ची मुच्ची मेरे लिए?
1: हाँ।
2: तुझे पता है मैं माँ को कुछ नहीं बताई?
1: मुझे पता था तू माँ को कभी कुछ नहीं बताएगी। मम्मा बोले, नाक बाबा डोले, जो झूठ बोले उसी को खा ले।
3: निखिल, क्या हुआ?
4: कुछ नहीं।
3: तुम उससे शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मना कर दो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बी फर्म, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है।
0: द ब्रदर सिस्टर बॉन्ड इन दिस फिल्म टेंड्स टू बी द इमोशनल हार्ट बीट ऑफ द फिल्म।
3: क्या बात है निखिल?
4: लव यू अ लॉट प्रिंसेस।
3: लव यू टू भाई।
0: And it's portrayed with rare sincerity and depth. Unlike typical Bollywood depictions, where sisters often exist merely as supporting side characters, Anamika is portrayed with full emotional agency and complexity.
4: मेरे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है। Clearly नहीं पता। उस दिन स्विम करने गया था, मुझे देखते ही सारे लोग पूल से बाहर निकल गए। टीम से भी निकाल दिया गया हूं।
3: आई डोंट अंडरस्टैंड, ब्लड में प्रॉब्लम है? आई एम श्योर देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग।
0: शी इजंट जस्ट द सिस्टर हु टाइज रॉकी, बट द वन हु स्टैंड्स हर ग्राउंड एंड फाइट्स फॉर हर ब्रदर्स डिग्निटी।
5: अब क्या हम सब को मारना चाहता है? ये शर्म, अब तेरी वजह से हम किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकते।
0: When her brother Nikhil, who is a state-level swimming champion, is diagnosed with HIV and faces societal ostracization, Anamika remains steadfast.
3: आज याद है क्या है?
4: क्या है?
3: हाथ आगे बढ़ाओ।
4: क्यों?
3: ता-ना-ना-ना।
0: Helping him rebuild a life grounded in dignity.
3: मेरा गिफ्ट।
4: तुम अब भी कितने लालची हो, हाँ?
3: और तुम अब भी कितने कंजूस हो?
6: ओए तेरे भी सब मेरे नाम तो जानेंगे। सरजीती पैण बाबा, सरजीती पैण लाइक फैमिली फोटो।
0: Rocky isn't just a thread, it's a promise. And Dalbir Kaur lived it every single day. Starring Randeep Hooda and Aishwarya Rai Bachchan, the film showcased the story of a sister's undying love and protective nature as she goes to the tremendous extent to save her brother.
6: You are my friend. Hey, Pagwano, open the door. Sarbjit Singh Atwal, diwar phond ke nahi hona.
7: Sochna bhi mat. खबरदार, जो किसी ने दरवाजा खोला तो।
6: ओए हमारी क्या शामत आई है, रास्ता गिन रहे हैं। फिर मिनता करोगे ना तो आज वापस नहीं आऊंगा। सुख है ना, कल्ले पाल नहीं फिर दोनों कुड़िया।
7: हाँ जी, तुसी फिकर ना करो, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
8: और नहीं तो क्या, अब तरस बाहर खड़े खड़े।
6: अरे तुम लोग तरसोगे, बोल रहे हैं। एक दो तीन चार
8: पाँच छह सात आठ नौ दस, जा खसमड़ खा।
6: ठीक है फिर, याद रखी, जा रहे हैं। ओके जी, आंडिया गवांडिया नू प्यार और वंडिया नू।
7: बैठ जी, देखो
8: बेशर्मा, आप तेरी खैर नहीं।
6: ओए दिल्ला करिल्ला रख ले यार।
0: The film depicts the real-life struggle of Dalbir Kaur, Sarabjit Singh's elder sister, who dedicated her entire life to ensuring her brother's release from Pakistan.
9: देश जितनी बड़ी नहीं है, मेरे पास एक ही मुद्दा है, एक ही पाई है मेरा।
0: Her unwavering fight lasted 23 years.
10: इंसानियत वाला रिश्ता है जी, पर अफसोस वो हमारे मुल्कों में चलता कहाँ।
0: But her brother was cruelly killed by inmates just before his release. This film is surely a powerful reminder that a sister's love knows no borders, no limits, and definitely no fear.
11: पूरी दुनिया में घूम रहा है। आजा
12: क्या रे,
13: जल्दी जल्दी जल्दी, she's all right.
12: Hey, तो ठीक तो है,
13: she's okay यार।
0: जोश इज अ राउजिंग मिक्स ऑफ ड्रामा, इमोशन एंड एंटरटेनमेंट।
12: तेरे को फाइट के बीच पहले का क्या जरूरत था?
9: मेरे को डर लग गया था।
12: डर कैसा, कितना फाइट तो देखी है ना तू पहले, डर क्या?
9: तेरे को कुछ हो जाता तो
12: क्या होएगा मेरे को?
0: A story about fierce loyalties, hidden heritages, and ultimately the power of family and love to heal even the deepest rivalries. The movie delves deeper in the lives of Max, played by Shah Rukh Khan, and Shirley, portrayed by Aishwarya, who are twins living in Goa, whose bond is unbreakable and protective. Shirley's secret love for Rahul, who is the brother of Max's arch enemy, ignites tension. Max erupts, torn between loyalty and love. The siblings reconcile, marriage heals rivalries, and their brother-sister unity becomes the emotional heart of this action drama.
12: ये केक अपना हाथ से वहाँ पर पहुँचाने का क्या है? लेकिन साला अगर हाथ ही नहीं रहा था।
0: The Khalid Mohammed directorial Fizza stands out as a socially relevant film that addresses complex issues with sensitivity and depth. This is a poignant film set against the backdrop of the 1993 Mumbai riots. It follows Fizza Ikramullah, played by Karishma Kapoor, and her journey as she embarks on a relentless search for her brother, Aman, portrayed by Hrithik Roshan. And when she finally reunites with him, she discovers that he has joined a militant organization, leading to a tragic confrontation that tests the limit of filial love and moral boundaries.
9: हथियार फेंक दे अमन, ये सब क्या हो गया अमन, क्या हो गया?
14: हमारी खुशी छिन गई अपा।
4: शायद हमारी हंसी को नजर लग गई।

0: One catastrophe. Rescue teams racing against time. Then a brief halt after a fresh warning. Another threat is beginning to unfold in flood-ravaged Nepal. A day after China warned that another glacial lake outburst could be imminent, India Today has been tracking the developments from ground zero, bringing you every detail of these unfolding warnings.
1: Nepal is now on a risk of another severe calamity after China alerts Nepal for another glacier lake formation in the confluence. Major two rivers where till 27th of morning, nearly 2 million cubic water has been collected, and another 3 days it is likely to reach up to 5 million cubic. And in that case, even these lakes would breach the barrier, and in that case you will see all these river terrain of Nepal would be flooding with the severe debris.
0: People living in vulnerable areas have been told to evacuate. Rescue teams had been asked to stand down as authorities closely monitor the rapidly rising water levels. The administration is on high alert. Here is the moment where the rising waters started creating panic among the locals.
2: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही चेतावनी दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि बाढ़ आ सकती है, ये देखिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये तमाम सारे लोग अब यहाँ से नीचे के इलाकों से आगे की ओर जाना शुरू कर चुके हैं और चीन की ओर से भी चेतावनी दी गई थी कि जो लगभग अब तक 20 लाख क्यूबिक मीटर का पानी जमा हो चुका है और यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं और ये तमाम लोगों को अब यहाँ से आगे, ये नुआकोटी का वो धुंडे इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही के हमें मंजर देखने को मिला था, आखिरी वो शहर जो बर्बाद हुआ, और उसके बाद अब लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाए। ये पुलिस है और लगातार लोगों को कह रही है कि यहाँ से निकलिए, आगे की ओर जाइए। अब तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है कि खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है, ऊपर से पानी आने की गुंजाइश फिर से है।
0: But behind this latest threat lies a deeper and more disturbing reality, the extreme fragility of the Himalayan ecosystem. The region is increasingly exposed to a dangerous combination of unstable terrain, glacial activity and seismic forces, creating the conditions for sudden and devastating disasters.

0: One catastrophe. Rescue teams racing against time. Then a brief halt after a fresh warning. Another threat is beginning to unfold in flood-ravaged Nepal. A day after China warned that another glacial lake outburst could be imminent, India Today has been tracking the developments from ground zero, bringing you every detail of these unfolding warnings.
1: Nepal is now on a risk of another severe calamity after China alerts Nepal for another glacier lake formation in the confluence. Major two rivers where till 27th of morning, nearly 2 million cubic water has been collected, and another 3 days it is likely to reach up to 5 million cubic. And in that case, even these lakes would breach the barrier, and in that case you will see all these river terrain of Nepal would be flooding with the severe debris.
0: People living in vulnerable areas have been told to evacuate. Rescue teams had been asked to stand down as authorities closely monitor the rapidly rising water levels. The administration is on high alert. Here is the moment where the rising waters started creating panic among the locals.
2: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही चेतावनी दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि बाढ़ आ सकती है, ये देखिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये तमाम सारे लोग अब यहाँ से नीचे के इलाकों से आगे की ओर जाना शुरू कर चुके हैं और चीन की ओर से भी चेतावनी दी गई थी कि जो लगभग अब तक 20 लाख क्यूबिक मीटर का पानी जमा हो चुका है और यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं और ये तमाम लोगों को अब यहाँ से आगे, ये नुआकोटी का वो धुंडे इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही की हमें मंजर देखने को मिला था, आखिरी वो शहर जो बर्बाद हुआ, और उसके बाद अब लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाए। ये पुलिस है और लगातार लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ से निकलिए, आगे की ओर जाइए। अब तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है कि खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है, ऊपर से पानी आने की गुंजाइश फिर से है।
0: But behind this latest threat lies a deeper and more disturbing reality, the extreme fragility of the Himalayan ecosystem. The region is increasingly exposed to a dangerous combination of unstable terrain, glacial activity and seismic forces, creating the conditions for sudden and devastating disasters.

0: One catastrophe. Rescue teams racing against time. Then a brief halt after a fresh one. Another threat is beginning to unfold in flood-ravaged Nepal. A day after China warned that another glacial lake outburst could be imminent, India Today has been tracking the developments from ground zero, bringing you every detail of these unfolding warnings.
1: Nepal is now on a risk of another severe calamity after China alerts Nepal for another glacier lake formation in the confluence. Major two rivers where till 27th of morning, nearly 2 million cubic water has been collected, and another 3 days it is likely to reach up to 5 million cubic. And in that case, even these lakes would breach the barrier, and in that case you will see all these river terrain of Nepal would be flooding with the severe debris.
0: People living in vulnerable areas have been told to evacuate. Rescue teams had been asked to stand down as authorities closely monitor the rapidly rising water levels. The administration is on high alert. Here is the moment where the rising waters started creating panic among the locals.
2: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है। लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही चेतावनी दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि बाढ़ आ सकती है, ये देखिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ये तमाम सारे लोग अब यहाँ से नीचे के इलाकों से आगे की ओर जाना शुरू कर चुके हैं और चीन की ओर से भी चेतावनी दी गई थी कि जो लगभग अब तक 20 लाख क्यूबिक मीटर का पानी जमा हो चुका है और यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं और ये तमाम लोगों को अब यहाँ से आगे। ये नुआकोटी का वो धुंडे इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही की हमें मंजर देखने को मिला था, आखिरी वो शहर जो बर्बाद हुआ, और उसके बाद अब लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से निकल जाए। ये पुलिस है और लगातार लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ से निकलिए, आगे की ओर जाइए। अब तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है कि खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है, ऊपर से पानी आने की गुंजाइश फिर से है।
0: But behind this latest threat lies a deeper and more disturbing reality, the extreme fragility of the Himalayan ecosystem. The region is increasingly exposed to a dangerous combination of unstable terrain, glacial activity and seismic forces, creating the conditions for sudden and devastating disasters.